0: on YouTube.
1: Oh my god.
2: Adam Kadu Salam Babu Bhai.
3: कहाँ चोरी करके घूम रहा है तू मेरा नागिल
0: नागिल
2: आदम कदू सलाम बाबू भाई.
3: कहाँ चोरी करके घूम रहा है तू मेरा नागिल
4: तिगनन जो तुम नाने को नगलूलूतो na naman malapit sa